0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: दे से मॉर्निंग शोज द डे मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स बाय मिडडे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट दैट्स व्हेन द राइट इनसाइट्स हेल्प्स यू रीथिंक द डे ट्रेड्स ट्रेंड्स द मूव्स दैट मैटर जॉइन मी निशा पोद्दार फॉर मार्केट्स एट 12 योर एज फॉर एवरी मूव
2: Buy now. Sell immediately.
3: Hold it, boss.
4: Buy now.
5: Sell.
4: Hold.
5: Buy.
4: Sell immediately.
0: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet. Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
7: वाओ मामा क्या स्वाद है
6: अरे मेरे राजा
8: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
9: When markets close, clarity matters as much as speed.
8: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
9: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
8: Join us before every closing bell
9: on India Market Close.
10: The news. Ayush, since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
11: Wow.
10: 4K. The works.
11: Where's the hook?
10: There's going to be

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service.

0: also passes in Parliament in the upcoming monsoon session. Thanks for joining me live, Aishwarya. We'll keep coming back to you for more. Ahead of the monsoon session, the Modi government appears to be moving closer to Mission 360. On the 21st of July, the NDA parliamentary party will meet under Prime Minister Narendra Modi's chairmanship. Beyond the monsoon session strategy, the meeting is expected to showcase NDA's growing strength. Sources tell NDTV that 20 NCP MPs who broke away from the TMC, the NCPI MPs who broke away from the TMC, along with six Sena UBT rebel MPs who joined Shinde, are likely to attend. The numbers are crucial as the government eyes the two-thirds majority needed for key legislation, including the delimitation bill. Sources also indicate that Sharad Pawar's faction of the NCP, there's been an outreach to that party as well as the DMK. Talks are on to convince some SP MPs also to abstain. So how close is the NDA to Mission 360? My colleague Padmaja Joshi breaks it down for you.
1: Now let's take a look at what is the existing strength of the NDA. Essentially, you've got 298 plus NCPI 20, UBT Rebels 6 already joining them. NCP Sharad Pawar, our experts are saying, 8 of them are going to be joining. Now, YSRCP had already voted with the NDA, so 4 of theirs. We are also putting DMK over here, 22. I will tell you why in just a second. But basically, that means NDA is short of only 2 for that magic figure of 360. Now, where does this additional 2 come from? You've got Congress plus Samajwadi Party is at 136. These are the people who are right now very vulnerable. 9 remaining of the Trinamool Congress, Shiv Sena UBT 3, others 25, Aam Aadmi Party 3, JMM 3, Akali Dal 1, and that's Harsimrat Kaur Badal, and 7 independents. सिर्फ दो की और जरूरत है समीर जी.
2: जेएम विल सपोर्ट, उसने बोल दिया जेएम ने कि वो सपोर्ट कर सकता है इसमें.
1: तो बस, और
2: शिवसेना शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, हाँ, उसके अरविंद सावंत ने भी बोल दिया है कि हम समर्थन कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि 50% अगर सीटें बढ़ रही है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन करने जा रही है.
1: यानी कि 360 मिल गए.
2: बिल्कुल,
1: बट इसमें की एक फिगर है, वन की फिगर,
2: उसमें से एब्सेंट भी रहने वाले हैं ना.
1: वन की फिगर वी आर अज्यूमिंग हर आशुतोष इज 22 ऑफ डीएमके. Do you think this 22 is going to cross over and vote with the NDA? And why I'm saying this is because none less than Mr. Chidambaram said it. He really let the cat out of the bag when he said that NCP Sharad Pawar and DMK is being aggressively wooed by the BJP. So they've got 360. Ashutosh.
3: See, Padmaja, we are assuming that the similar will be again tabled in the parliament. We are not, and the BJP is also conceding the point, because what are the DMK's point? The DMK's demand was that on the basis of population, we will be the sufferer. So, and they were demanding 50%. If the BJP is willing to give 50% formula, is going by the 50% formula, then who should have a problem?
0: A fresh political showdown has erupted over Article 370 and Jammu and Kashmir statehood after the Congress leader's controversial remark. The BJP has launched a sharp attack on the Congress, accusing Saifuddin Soz of echoing Pakistan's narrative and questioning the timing of his remarks ahead of Parliament session. BJP has demanded that Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge clarify whether Soz's comments reflect the party's official stand. This comes after Congress leader Soz called for the restoration of the special constitutional provision and greater internal autonomy for Jammu and Kashmir. Speaking in Srinagar, Soz said the people of Jammu and Kashmir must fight for the restoration of Article 370, asserted that union territory status is only temporary, and said internal autonomy must be restored.
4: हमारा मसला स्टेटहुड का नहीं है. स्टेटहुड कौन छीन सकता है? क्या कयामत तक यूनियन टेरिटरी इसको कोई बना सकता है? वजीर आजम हो या वजीर दाखला हो, कोई जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता. ये टेम्प्रेरी चीज़ है. हमारा असल मसला अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए.
5: देखिए, यहां तक प्रश्न 370 को लेकर है, 35A को लेकर है. इतिहास के पन्नों में जो कुछ गुम हो जाता है, चला जाता है, वो बाहर नहीं आता. और आज के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं, केंद्र में वही सरकार है वही देश के प्रधानमंत्री हैं, वही देश के होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 370 को 35 को निरस्त किया था। ख्याली पुलाव बनाना बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए, लेकिन देश के हित में जो है, जम्मू कश्मीर के हित में जो है, वही कांग्रेस को जो है वो सोचना चाहिए।
6: राहुल गांधी जी एज यूजुअल फ्रॉम अ सस्पिशियस एंड कॉन्स्पिकुअस फॉरेन टूर ही हैज जस्ट लैंडेड इन इंडिया एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट हाउ कम एनी नॉन इंडियन और एंटी नेशनल स्टेटमेंट हैज नॉट कम द मोमेंट ही हैज पुट हिज फुट ऑन द पायस लैंड ऑफ इंडिया अ डास्टर्डली स्टेटमेंट हैज कम from Mr. Saifuddin Soz, who is a senior most leader of Congress party, former union minister and former president of Jammu and Kashmir Congress. He has gone to the extent that Jammu Kashmir doesn't require only statehood, but it requires to restore 370. He goes beyond and says that our main target is Dakhili Khudmukhtari, means sovereignty in India.
7: कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को सॉफ्ट सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो आर्टिकल 370 को वापस से लेना चाहते हैं। इससे ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में कभी आई तो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी को बढ़ावा देगी। दिस एक्सपोजेस कांग्रेस पार्टीज एंटी इंडिया पॉलिटिक्स, और यही राहुल गांधी की असली पॉलिटिक्स है। वो भारत जोड़ों में विश्वास नहीं रखते, भारत तोड़ों में विश्वास रखते।
8: This is not Indian National Congress, it is Islamabad National Congress. Congress was not speaking only for statehood. They are actually talking about separatehood for Jammu Kashmir and they are echoing Pakistan's line. Saifuddin Soz has proven it. Saifuddin Soz, who has batted for Afzal Guru and Burhan Wani in the past, says that forget statehood, we want 370 to be restored. 370 being restored means Indian constitution should not apply. It means that the tribals and the Vanchit Samaj should not get reservation. It means that the RTI and other important laws should not be applied. It means that they should play into the hands of Pakistan, which wants PP, Pakistan Prasti, Patharbaji, not democracy, development. And Congress is echoing this line.
9: Saifuddin Soz saab, ek educationist hain, professor hain, politician hain, aur buzurg hain. Unhone jo bayan diya hai, 370 के हवाले से उसमें कोई गलत बात नहीं है। जम्मू कश्मीर को जब हम डिस्कस करते हैं तो जब एक्सेशन हुआ, महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन किया 1947 में, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था दिल्ली में, उस वक्त दो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे और उनके नुमाइंदों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 का प्रोविजन रखा और 35 है बाद में उसमें जोड़ दिया गया।
0: The controversy comes even as National Conference Party continues to press for the restoration of Jammu and Kashmir statehood. Listen into Omar Abdullah.
10: रियासत का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर एहसान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक वादा किया गया था। इस वादे में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं है, इस वादे में तमाम वो पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने पौने दो साल पहले इलेक्शन लड़ा।
0: On that note, we slip into a short break. When I'm back, we're going to talk all things FIFA, the big win for Argentina, the big disappointment for England. More on that in moments from now. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Buy now, sell immediately.
11: Hold it, boss.
12: Buy now, sell.
13: Hold.
14: Buy, sell immediately.
15: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
16: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
17: The fact that there is now suddenly a raging debate with regards to ethanol, why is it that it's happening now?
18: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस। बाय नाउ सेल। होल्ड होल्ड। बाय सेल
11: इमीडिएटली। कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत, Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
13: The fact that there is now suddenly a raging debate with regards to ethanol, why is it that it's happening now?
14: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years, and by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
15: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
16: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
17: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
18: This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
20: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
21: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
22: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried

0: are spending weeks on dialysis instead of caring for their babies.
1: मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा पंखा पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
0: Families told NDTV they are still struggling to obtain complete medical records and say they have received little support after losing their loved ones.
2: मुझे डॉक्टरों के लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास।
0: NDTV report also raised questions over post-operative monitoring, possible lapses in infection control, and the multiple investigations still underway into IV fluids, surgical consumables, and other possible factors. Officials maintain that the exact cause has not yet been established. Now the government says every maternal death will be reviewed separately. Hospital-wise reports have been sought. Compliance with infection control SOPs will be scrutinized. And if negligence is found, officials say accountability will follow.
3: We've called them all, having a brainstorming. So we are trying to see as quickly as possible to arrive at some what the problem is.
0: The health minister will also visit Bhilwara, where 5 maternal deaths were reported in 6 days, and Banswara, where 2 more maternal deaths have raised fresh concerns. The government has now moved into action. But for families who have lost daughters, wives and mothers, the questions remain unchanged. What caused these deaths? Could they have been prevented? And who, if anyone, will ultimately be held accountable? With Bismi Taksin and Harsha Kumari Singh, NDTV Bureau Report.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: The Delhi High Court has stepped in as activist Sonam Wangchu's indefinite hunger strike entered its 19th day, hearing a petition that warned his condition could turn critical within the next 48 hours. The court directed the government to ensure his health and safety. It ordered that a government doctor monitor Wangchu and said that any medical intervention necessary to save his life should be actually provided.
1: हैरानगी की बात यह है कि 18 दिन हो गए अभी उनको, 19वां दिन शायद चल रहा है, 9 किलो के आसपास वजन उनका कम हुआ है, उनकी तबीयत पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत तस से मस नहीं कि किसी तरह वो उन्हें अपील करें कि अपना भूख हड़ताल वो रोक दें। सियासत अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत और रहम के लिए भी जगह होनी चाहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा पंखा पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: Families told NDTV they are still struggling to obtain complete medical records and say they have received little support after losing their loved ones.
2: मुझे डॉक्टर के लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास।
1: NDTV report also raised questions over post-operative monitoring, possible lapses in infection control, and the multiple investigations still underway into IV fluids, surgical consumables and other possible factors. Officials maintain that the exact cause has not yet been established. Now the government says every maternal death will be reviewed separately. Hospital-wise reports have been sought. Compliance with infection control SOPs will be scrutinized. And if negligence is found, officials say accountability will follow.
3: We've called them all, having a brainstorming. So we are trying to see as quickly as possible to arrive at some what the problem is.
1: The health minister will also visit Bhilwara, where 5 maternal deaths were reported in 6 days, and Banswara, where 2 more maternal deaths have raised fresh concerns. The government has now moved into action. But for families who have lost daughters, wives and mothers, the questions remain unchanged. What caused these deaths? Could they have been prevented? And who, if anyone, will ultimately be held accountable? With Bismi Taksin and Harsha Kumari Singh, NDTV Bureau Report.
4: All right, we have some breaking news coming in, this time from West Bengal. TMC has now called for massive protests over Kolkata Airport mosque row. And this is, of course, let's tell you about what the issue is on the proposed relocation of the airport mosque. Now, TMC leader Siddiqullah Chaudhary has now said that the relocation of the airport mosque is perhaps an attack on our community. And he's perhaps urged all the TMC workers, he says, I urge 1 crore Muslims in West Bengal to wear black armbands and come out and protest against this. Take a listen.
5: आप अगर विकास का एक नोटिस लगा देते अथॉरिटी के साथ 24 इयर्स हमारा लेन देन है, चिट्ठी है, चिट्ठी देने में क्या परेशानी है उनको, नोटिस देने में क्या परेशानी, बातचीत करने में क्या परेशानी, गुंडागर्दी इसलिए है हम पर वार करने की कोशिश हुई है। हम लोग मोहल्ले वाले हिंदू भाई एक साथ रहते हैं, हम बाबा मारामारी नहीं चाहते। आइंदा कल जुमा है, इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतजाज करके चले आएंगे और इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक बात, प्रदर्शन में ना माइकिंग, ना कैनवेसिंग, ना जबरदस्ती, कुछ नहीं होगा। आप उल्टा उल्टी बात मत कीजिए। हम लोग जुमा की नमाज कल 11:30 बजे गेट पर जाएंगे, मोहल्ले का आदमी, बंगाल का कोई आदमी नहीं होगा। हमारी मस्जिद है, ये लीगल अथॉरिटी कोई उठा, कोई कागज तो कोई इधर जाओ।
4: We have, you heard the TMC leader there giving that call for various TMC leaders, also for Muslims to come out and protest against.

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मॉनसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील,

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
12: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
13: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
12: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद।
14: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: Welcome back. You're with us on The Gold Rush. Now, Erling Haaland may have missed out on the World Cup, but he is still making headlines. The Manchester City striker stepped into the spotlight alongside girlfriend Isabel Johansson at the Dolce & Gabbana fashion show in Rome, turning heads with a stylish appearance after Norway's World Cup heartbreak. Take a look at these visuals and we'll join you on the other side of a short break with more news and updates.
16: Norwegian and Manchester City footballer Erling Haaland is proving his fashion game is just as strong as his finishing. The goal machine made a stylish appearance at the Dolce & Gabbana Alta Sartoria show.

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
12: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
13: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
15: जानते हैं? मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
16: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 PM.
14: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
17: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting on this.
19: Hello everybody, you're watching NDTV. Tonight on The Southern View, we look at the big question: can Tamil Nadu Chief Minister Vijay deliver on his promise of zero corruption and also zero tolerance for corruption, or has he set the bar too high for his own government? Now there are two no easy

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
7: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
9: देश का टायर जेके टायर।
10: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
11: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस तेल में।
13: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
14: Really?
13: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिन।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
7: और जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल में प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: Despite heavy rain, lakhs of devotees gathered in Puri for the annual Rath Yatra amid chants of Jai Jagannath. Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra began their sacred journey from the Shri Mandir to the Shri Gundicha temple in Puri in Odisha, leaving you with these visuals.

0: सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
11: और जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल में प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
13: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
14: भारतम। India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
15: Please thank the awards and the jury lineup. You are truly giving it the right weightage.
16: I think it's

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: देश का टायर।
1: The software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो

0: सुबह
1: बाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
5: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
6: द थग यू सी is Shinde Sena Corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
7: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
8: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
9: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
8: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
9: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
8: इसका मतलब कि आगे जाके भी
9: सर,
8: अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
9: प्रशिक्षण हम हमारे
8: नहीं मांगेंगे
9: सर।
10: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
11: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
12: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
13: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
14: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
15: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
16: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
17: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
18: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
11: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
19: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
19: Fashion that made you gag.

0: मिलता है।
1: हाँ।
0: और क्या क्या मिलता है?
1: और कुछ नहीं मिलता, वो पेटे मिलती है सत्तू की।
0: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
1: दलिया अभी अभी मिला था और फिर वापिस बंद कर दिया, 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है।
2: The government admits there were problems in supplying take-home ration.
3: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे।
2: The government is changing the structure of the scheme once again, but a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
4: On that, we'll slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV.

0: children, 14 pregnant women and 8 lactating mothers are registered at this tiny centre. But according to the Anganwadi worker, no take-home ration arrived in May or June.
1: एक महीने की देरी हुई है
2: जी.
1: जो हमारे पास अप्रैल में आया था तो कुछ पहले से भी था, तो हमने अप्रैल और मई में बांटा उसको, लेकिन जून महीने में नहीं था हमारे पास किया चारा, जुलाई में फिर से आ गया.
0: The ration arrived in April, then there was a 2-month gap, followed by supplies in July. Under the ration program, children aged 6 months to 3 years are supposed to receive the following every month: halwa premix, Bal Ahar, Khichdi packets. Pregnant and lactating women are entitled to wheat soya barfi, wheat besan mix and khichdi. This is not ordinary food. It is supplementary nutrition meant for children and mothers whose health is already at risk. NDTV visited several Anganwadi centres across Bhopal. From Amravat Khurd to Barkheda Pathani and areas around Vallabh Bhavan. In April 2026, 4-month-old Supriyanshi died in Majghavan block of Satna district. She weighed only 2.86 kilograms. Nearly 200 kilometers away, in ward number 16 of Agar Malwa, Anganwadi worker Sharda Yadav teaches children about the benefits of fruit. The centre has 106 registered children. But the government's own Poshan Tracker app shows that take-home ration did not reach the centre in June or July.
1: No, in the last month, it didn't get in June. The rest are regular.
2: July?
1: Yes, not in July. Yes, in July. June came,
2: but in July. So, you have also talked about the
1: authorities? Yes, I know them that it didn't get in. Take-home ration didn't reach the center.
2: So, what
1: did you say? It will come.
0: In the same town, helper Prem Bhai feeds children under a neem tree. The one-room Anganwadi is overcrowded with stored material. Around 40 children are registered here. But the centre hasn't received take-home ration for over a month.
2: तो इसके बारे में अधिकारी से बात हुई, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह बताया कुछ?
1: अभी नहीं, आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना.
3: 15 दिन हो गए. जी, 15 दिन से नहीं मिल रहा है. हाँ,
2: आपने बात की यहाँ पे आंगनवाड़ी में?
3: बात की, ये बोल रहे आगे से ही नहीं आ रहा, आने वाला है, आने वाला बोल रहे.
0: इन सागर्स कटरा लोकेलिटी एनडीटीवी विजिटेड 2 आंगनवाड़ी सेंटर्स. टुगेदर दे सर्व ओवर 30 चिल्ड्रन एंड मोर देन 10 प्रेग्नेंट वुमेन.
4: 3 महीने करीब हो गए.
2: अच्छा, इसमें क्या क्या दिया जाता था?
4: इसमें गर्भवती और धात्री माताओं को THR के रूप में हलवा, गेहूं सोया बर्फी और खिचड़ी दी जाती थी.
5: 3 महीने होने वाले हैं, अब आया नहीं है अभी THR, तो वितरण रुका है अभी.
0: इन विदिशा, 1-year-old डॉटर ऑफ पूजा आदिवासी वेज जस्ट 4.8 kilograms. पूजा सेज राशन कम्स ओकेजनली बट नॉट रेगुलरली.
6: वो दलिया मिलिया मिलता है.
2: हाँ, और, दलिया मिलता है. हाँ. और क्या क्या मिलता है?
6: और कुछ नहीं मिलता, वो पेपटे मिलती है सत्तू की.
2: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
6: दलिया अभी अभी मिला था और फिर वापिस बंद कर दिया. 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है.
0: द गवर्नमेंट एडमिट्स देयर वर प्रॉब्लम्स इन सप्लाइंग टेक होम राशन.
7: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे.
0: The government is changing the structure of the scheme once again. But a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
8: On that, we'll slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV.
9: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. and the world's most defining interviews.
11: It's incredible.
9: He has seen history break.

0: मिशन इम्पॉसिबल फॉर मोदी सरकार।
1: डीएमके विल नॉट सपोर्ट बीजेपी, दे मे सीक आवर सपोर्ट बट वी विल नॉट डू इट। डीएमके विल नॉट सपोर्ट बीजेपी, दे मे सीक आवर सपोर्ट बट वी विल नॉट डू इट। डीएमके विल नॉट सपोर्ट बीजेपी, दे मे सीक आवर सपोर्ट बट वी विल नॉट डू इट।
2: Dear partners are confident, we, the BJP is confident, but you may be surprised to know that the Congress CM of Telangana is also confident that delimitation is going to happen, women's reservation bill is going to happen.
3: Not just the NCP, several other parties will definitely be coming on board to support the delimitation bill, because political parties understand the relevance of this particular bill. Except parties which are not in interest of women empowerment, all the other parties will support delimitation, because this is going to actually empower, not just on paper but in actual practice. Women will get more authority, more power and more representation within the government functioning.
0: All right, so what happens? Shehzad Poonawalla, spokesperson of the BJP, joins us along with political analyst Sanjay Jha, who will be joining us in just a second. We also have Abbas Haider of the Samajwadi Party with us. Shehzad Poonawalla, hobena. So much jod tod you have done, 22 from TMC, 6 from Shiv Sena UBT. But it seems the DMK is going to be the runaway bride. They are going to stiff you at the altar.
4: See, Padmaja, I am not in the habit of doing mundan of a baby that is not born. Just now, I have got the agenda of the parliament session, which has come from the government side. Income tax amendment bill, Supreme Court number of judges amendment bill, registration of birth and death amendment bill, prevention of insult to national honor amendment bill, MSME development amendment bill. इसमें किधर है delimitation?
0: Are you saying delimitation bill आप नहीं लेके आएंगे?
4: अब इसमें ये है कि मैं तो भविष्यवाणी राहुल जी वाली नहीं कर सकता. राहुल जी की भविष्यवाणी मेरे में नहीं है वो स्किल्स, बट राइट नाउ द बिल इज एज मच एज एन ऑफर एज द आई डोंट वांट टू यूज द एनालॉजी बट एज द हेयर ऑन संजय हेड इट्स नॉट देयर ऑन द टेबल बट लेट मी कंप्लीट नाउ प्रॉब्लम क्या है मैं कविता के फॉर्म में लिख के आया हूँ केवल आनंद दुबे नहीं करते कविता मैं भी करता हूँ जहां पड़े राहुल के कदम वहां पे पार्टियों ने तोड़ा दम हो गई पार्टियां एक के बाद एक खत्म सब समाप्त करेंगे राहुल जी का ये है वादा और दम ऑपरेशन टाइगर नहीं एक्चुअली चल रहा है ऑपरेशन विलयम देयर इज नो ऑपरेशन टाइगर इट इज ऑपरेशन विलयम आई टेल यू व्हाट राहुल गांधी टचेस आरजेडी आरजेडी ओवर देन दे से आरजेडी यू कम एंड मर्ज विद अस राहुल गांधी टचेस शरद पवार पार्टी शरद पवार जी पार्टी ओवर देन दे से कम एंड जॉइन अस नाना पटोले मेड दैट ऑफर राहुल गांधी टचेस टीएमसी टीएमसी ओवर राहुल गांधी इज नाउ गिविंग एवरीडे धमकी टू समाजवादी पार्टी इमरान मसूद के हाफ हाफ सीट दे दो सो एक्चुअली इट इज कांग्रेस विच इज ऑन द लर्च कांग्रेस इज सेइंग कि बीजेपी आ रहा है आप विलय कर लो ना कांग्रेस की इस बदनीयति के लिए हम जिम्मेदार नहीं है नोबडी वांट्स टू बी विद राहुल फॉर इंस्टेंस
0: और सारा विलय आप में हो जाता है
4: नहीं, नहीं,
0: मेरा के उनके 6 सांसद आप में विलय हो जाते हैं कौन सा सांसद है अरे शिवसेना यूबीटी 6 ऑफ देम यू
4: टू नहीं आए
0: 20 अरे शिव से अच्छा ठीक है शिवसेना में गए हैं
4: एक ही शिवसेना है There is only one Shiv Sena. That is Adwani.
0: NCP आए तो आपके पास आ रही है ना?
4: नहीं नहीं ऐसा है सुनिए.
0: They are working under the leadership of the BJP.
4: Independent party. It is having alliance with NDA alliance.
0: Yes.
4: It is not with BJP. Technically, in fact, Adhir Ranjan Chaudhary said TMC MLS join me. Nana Patole said NCP Sharad Pawar join me. NCP Sharad Pawar fractionally reduced. And now I'll tell you last statement. Imran Masood has said Akhilesh is not speaking up for Muslims. Akhilesh is useless. Give us 50% seats. Am I lying? I'll make you hear the statement.
0: No, no, I heard the statement.
4: No, you ask Mr. You ask Mr. Abbas Haider.
0: I will decide.
4: Does he agree with Imran?
0: No, I will decide what I ask Abbas Haider. First, I will ask Shehzad Poonawalla.
4: Yes, yes.
0: Do you have 360 or not? As of today, do you have 360 or not?
4: I have more than 360.
0: But the Congress is saying they will not let you get 360.
4: I have more than 360.
0: How do you have more than 360?
4: I have entire country supporting me.
0: गवर्नमेंट ब्रिंगिंग इट इन द मिडल ऑफ इलेक्शन सीजन व्हेन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस वर ऑन एंड फॉर इट टू गेट डिफीटेड राहुल गांधी स्पोक टू अभिषेक बैनर्जी एवरीवन सेड दिस इज द बिगेस्ट डिफीट फॉर मोदी सरकार इन द लास्ट 12 इयर्स शहजाद पूनावाला इफ यू डोंट ब्रिंग इट इन दिस सेशन संजय झा और अब्बास हैदर विल से आप डर गए आपको पता था आपके पास 360 नहीं है एंड अगेन यू आर स्केर्ड
4: पद्मजा जी वी आर ऑलवेज कमिटेड टुवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन 24/7/365 इन फैक्ट द लर्निंग ऑफ बंगाल इज नॉट दिस द लर्निंग ऑफ बंगाल इज हूएवर हैज बीन अगेंस्ट वुमेन रिजर्वेशन वो

0: cotton in monsoon session? Yes or no?
1: When the treasury bench is not sure that they are going to get it in the house, when the BJP spoke,
0: Abbas Haider, Abbas Haider, your refusal to take a stand is going to worry Sanjay Jha a lot. Bol dije na, you had opposed it, you voted against it in April. Say no, we will not vote for it.
1: Obviously, on 17th of April, this bill fell. The similar way, if they are getting it back, it is going to fall once again.
0: Okay,
1: because
0: great.
1: Their intent
0: is categorical. Samajwadi Party is going to vote against it. Your whole, tukka of Dimple Yadav wants to vote in favor of it. It's not working.
2: First of all, my dear friend Abbas Haider, ko main bata dun ki ye jo mathematics ka calculation kiya, ye to Amit Shah ji ne pichle session mein bataya tha. Aur unhone to bola tha, ek ghanta de do, main likhwa ke lata hun ye baatein. और सुप्रिया सुले को भी सर 20 सेकंड्स अब्बास जी 10-20 सेकंड्स देन यू कम इन उस अभी जब सुप्रिया सुले ने मराठी में बाइट दी तो उन्होंने ये गणित समझाया, तो मैं तो सुप्रिया सुले की बात सुन के आपको गणित समझा रहा हूँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के लोग देख लो, आपकी 120 सीट होने वाली है, अब्बास भाई बोल रहे हैं नहीं करनी है, अब्बास भाई बोल रहे हैं 120 सीट नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की। अब बाकी अब्बास भाई तय करे, समाजवादी पार्टी तय करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश की 120 सीट से इनको प्रॉब्लम है, बिहार की 60 सीट से इनको प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र की 72 सीट से उनको प्रॉब्लम है। मैं तो केवल दर्शक को बता रहा हूँ कि आपकी 120 सीट होने वाली थी, ये अब्बास भाई बोल रहे कि नहीं करनी है।
0: अब्बास हैदर,
2: ठीक है, कोई समस्या नहीं।
1: ये दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। पद्मजा जी यही करते हैं ये।
2: अरे आपने मना किया,
1: बिल नहीं लाए। अरे साहब ये होने जा रहा
2: था, है साथ में नहीं है,
1: बैंक अकाउंट में आने जा रहे थे, अब्बास हैदर कह रहे नहीं आने दो, वरना तो हम 15 लाख दे देते। काला धन विदेश से आने जा रहा था, अब्बास हैदर कह रहे नहीं नहीं मत आने दो, वरना उत्तर प्रदेश के हर आदमी को लाखों रुपए बैंक अकाउंट। ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब जहां पे आप बिल भी नहीं लाए, अभी टेबल बिल नहीं हुआ, आप खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी कोई बिल है ही नहीं, कोई जेपीसी नहीं बनी, कहीं कोई बिल स्क्रूटनी में नहीं कहीं, आप हवा में जो है तीर चला रहे हैं और कह रहे हैं अब्बास हैदर ये कह रहे हैं।
2: चलिए मैं इसको थोड़ा मैं इसको रियल कर देता हूं, चलो रियल कर देता हूं। पद्मजा की डिबेट के सुनिए ना सर, सर सुनिए, आप बोल रहे ना सब इमेजिनरी हो रहा है, चलिए आई एक्सेप्ट। पद्मजा ने आज ये डिबेट रखा है कि लेट्स अज्यूम दैट दिस बिल विद वुमेन्स रिजर्वेशन इज ब्रॉट, आई एम सेइंग कि ये 120 सीट्स होगी उत्तर प्रदेश की, आर यू सपोर्टिंग आर यू रिजेक्टिंग?
1: सर पॉलिटिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशन, पॉलिटिक्स।
2: अब देखो उत्तर प्रदेश के लोगों, देख लो अखिलेश जी, देख लीजिए आपके पार्टी के प्रवक्ता है।
0: ओके, लेट्स टेक दिस बियॉन्ड द रियलम ऑफ अजम्पशन, एंड बिफोर आई कम टू यू संजय झा, लेट्स पुट आउट द एक्चुअल नंबर्स एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ। लेट्स डू अ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स कुड शेप अप इफ, एंड सिंस शहजाद पूनावाला इज सेइंग दैट दिस इज नॉट इन द एजेंडा जस्ट एज येट, इफ द गवर्नमेंट डज ब्रिंग इन the bill. Now the existing strength is at 358, and you see the math over there. In making this math, we have assumed that the DMK is going to be voting along with the NDA. You see that number of 22 there. So the magic number is 360 in Lok Sabha. Here the NDA is short by just 2. But if the DMK, and I'm predicating this only on what TKS Ellen Govan has said, if the DMK was to vote against the bill, then the NDA would be short by 24. And that is where this column of rest of the house, the 209 there, comes into play. So the DMK is there. Could the others in that blue column, people like the JMM, the Shiromani Akali Dal, the 7 independents, others like the YSRCP, could they actually help the NDA shore up this number of 24? Shehzad Poonawalla, there'll be a lot of, like we've said, this is almost like a cricket match. Let me actually take this to Sanjay Jha. It's going to be like a cricket match because you're a cricket aficionado, Sanjay Jha, where every single number, every single run scored is going to be calculated. 24 short if the DMK doesn't vote with the BJP, and just 2 short if the DMK does go along with the BJP, and to all appearances, they will, because what has happened in Tamil Nadu? You decided to kick them in the teeth and go over to the TVK. So in a sense, the Congress will be instrumental in pushing the DMK towards BJP. Sanjay Jha.
3: Padmaja, let me tell you, in practical terms, if the DMK were to support the delimitation bill, it will be harakiri, an act of political suicide. It will become totally irrelevant in the Tamil Nadu politics the day following that vote. So

0: है, जून में आया था, जुलाई में नहीं आया।
1: तो अधिकारियों से भी आपने बात की कि बताया?
0: हाँ, पता है उनको कि अभी नहीं गया है, टेक होम राशन नहीं पहुँचा है केंद्रों पे अभी,
1: तो
0: पता है।
1: क्या बोला उन्होंने?
0: आ जाएगा।
2: आम है फलों का राजा।
3: In the same town, helper Prem Bhai feeds children under a neem tree. The one-room Anganwadi is overcrowded with stored material. Around 40 children are registered here. But the center hasn't received take-home ration for over a month.
2: ताकत आती है एप्पल से, है ना, खाना जरूरी है।
0: 15 दिन हुए, नहीं तो अगले महीने तो आया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, अगले महीने आया था।
1: 15 दिन से नहीं मिला।
0: हाँ।
1: तो इसके बारे में अधिकारी से बात हुई, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह बताया कुछ?
0: अभी नहीं, आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना।
4: 15 दिन हो गए। जी, 15 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ,
1: आपने बात की यहाँ पे आंगनवाड़ी में?
4: बात की, ये बोल रहे, बोले आगे से ही नहीं आ रहा, आने वाला बोल रहे।
3: In Sagar's Katra locality, NDTV visited two Anganwadi centers. Together they serve over 30 children and more than 10 pregnant women.
5: 3 महीने करीब हो गए।
1: इसमें क्या क्या दिया जाता था?
5: इसमें गर्भवती और धात्री माताओं को THR के रूप में हलवा, गेहूं सोया बर्फी और खिचड़ी दी जाती थी।
6: 3 महीने होने वाले हैं, अब आया नहीं है अभी THR, तो वितरण रुका है अभी।
3: In Vidisha, one-year-old daughter of Pooja Adivasi weighs just 4.8 kilograms. Pooja says ration comes occasionally but not regularly.
7: बहुत दलिया मिलिया मिलता है।
1: हाँ, दलिया मिलता है। हाँ। और क्या-क्या मिलता है?
7: और कुछ नहीं मिलता, वो पेटे मिलती है सत्तू की।
1: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
7: दलिया अभी मिला था और फिर वापिस बंद कर दिया, 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है।
3: The government admits there were problems in supplying take-home ration.
8: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे।
3: The government is changing the structure of the scheme once again, but a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
9: On that, we'll slip into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV.
10: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
11: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
9: भारतम. Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
13: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
14: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
9: I decode the global pulse, shaping the market mood.
13: I bring insights that help you make decisions that matter.
14: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
9: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.

0: duties who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
1: Be part of the jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
2: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
3: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
4: War struck country.
2: Hard questions.
4: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
6: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
6: I am Vikram.
7: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Saeed, and Authentically Out.
9: The show that sets the prime time agenda.
11: In other news, Madhya Pradesh has restructured its ₹1200 crore nutrition program for 8.5 million children, pregnant women and even lactating mothers for the fifth time since 2018 as a responsibility shifts back to the Women and Child Development Department. Well, NDTV found many Anganwadi centers have gone up to 3 months without nutrition supplies. Here's Anurag Dwari's ground report.
12: Just behind the Madhya Pradesh Deputy Chief Minister's bungalow in Bhopal is Anganwadi Centre number 729. Nearly 50 children, 14 pregnant women and 8 lactating mothers are registered at this tiny centre. But according to the Anganwadi worker, no take-home ration arrived in May or June.
13: एक महीने की देरी हुई है
14: जी.
13: जो हमारे पास अप्रैल में आया था तो कुछ पहले से भी था तो हमने अप्रैल और मई में बांटा उसको लेकिन जून महीने में नहीं था हमारे पास किया चारा जुलाई में फिर से आ गया.
12: The ration arrived in April, then there was a 2 month gap followed by supplies in July. Under the ration program, children aged 6 months to 3 years are supposed to receive the following every month: halwa premix, bal ahar, khichdi packets. Pregnant and lactating women are entitled to wheat soya barfi, wheat besan mix and khichdi. This is not ordinary food. It is supplementary nutrition meant for children and mothers whose health is already at risk. NDTV visited several Anganwadi centers across Bhopal. From Amravat Khurd to Barkheda Pathani and areas around Vallabh Bhavan. In April 2026, 4-month-old Supriyanshi died in Majghavan block of Satna district. She weighed only 2.86 kilograms. Nearly 200 kilometers away, in ward number 16 of Agar Malwa, Anganwadi worker Sharda Yadav teaches children about the benefits of fruit. The center has 106 registered children. But the government's own Poshan Tracker app shows that take-home ration did not reach the center in June or July.
4: नहीं, पिछले महीने ही नहीं मिला है, जून में नहीं, बाकी हमारे रेगुलर चल रहा है।
5: जुलाई में भी नहीं मिला?
4: हाँ, जुलाई जून, हाँ अभी जुलाई में नहीं आया, जून में आया था, जुलाई में नहीं आया।
5: तो अधिकारियों से भी आपने बात की, बताया?
4: हाँ, पता है उनको कि अभी नहीं गया है। हाँ। टेक होम राशन नहीं पहुँचा है केंद्रों पे अभी,
5: तो
4: पता है।
5: क्या बोला उन्होंने?
4: आ जाएगा।
6: आम है फलों का राजा।
12: इन द सेम टाउन हेल्पर प्रेम बाई फीड्स चिल्ड्रन अंडर अ नीम ट्री। द वन रूम आंगनवाड़ी इज ओवरक्राउडेड विद स्टोर्ड मटेरियल। Around 40 children are registered here, but the center hasn't received take-home ration for over a month.
6: ताकत आती है एप्पल से, है ना, खाना जरूरी है।
4: 15 दिन हुए, नहीं तो अगले महीने तो आया था।
5: अच्छा।
4: हाँ, अगले महीने आया था।
5: 15 दिन से नहीं मिला।
4: हाँ।
5: तो इसके बारे में अधिकारी से बात हुई, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह बताया कुछ?
4: अभी नहीं, आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना।
7: 15 दिन हो गए। जी, 15 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ।
5: आपने बात की यहाँ पे आंगनवाड़ी में?
7: बात की, ये बोल रहे, बोला आगे से ही नहीं आ रहा, आने वाला बोल रहे।
12: इन सागर्स कटरा लोकेलिटी एनडीटीवी विजिटेड टू आंगनवाड़ी सेंटर्स। टुगेदर दे सर्व ओवर 30 चिल्ड्रन एंड मोर देन 10 प्रेग्नेंट वुमेन।
14: 3 महीने करीब हो गए।
5: इसमें क्या क्या दिया जाता था?
14: इसमें गर्भवती और धात्री माताओं को THR के रूप में हलवा, गेहूं, सोया बर्फी और खिचड़ी दी जाती थी।
15: 3 महीने होने वाले हैं, अब आया नहीं है अभी THR, तो वितरण रुका है अभी।
12: इन विदिशा, 1-year-old डॉटर ऑफ पूजा आदिवासी वेज जस्ट 4.8 किलोग्राम्स। पूजा सेज राशन कम्स ओकेजनली बट नॉट रेगुलरली।
16: दलिया मिलिया मिलता है।
5: हाँ, और, मिलता है। हाँ। और क्या क्या मिलता है?
16: और कुछ नहीं मिलता, वो पैकेट मिलती है सत्तू की।
5: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
16: दलिया अभी मिला था और फिर वापिस बंद कर दिया, 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है।
12: The government admits there were problems in supplying take-home ration.
17: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे।
12: The government is changing the structure of the scheme once again. But a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
11: On that, we'll slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV.